भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73

हरिमाया पौडेल, भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल, यादव पौडेल र चीजा पौडेल, खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी सहर नगरपालिका साथ भलुवाटार नमसुङ।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मेटी 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी जयहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाई नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजू अदिति पलातिनीहरू आर्य आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार नमसुङ।